0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: संगीत रुदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
1: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
1: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
1: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
3: कल्चर ऑफ पंजाब।
1: कल्चर ऑफ पंजाब।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद.
1: सीन के पहले टारगेट सेट कर जब उसे अचीव कर लेते हैं ना हम, तो एक अलग ही किस्म का सुकून, एक अलग किस्म की खुशी मिलती है हमें. पर असली मजा वो नहीं है, वो नशा, एक अलग सा मजा उस सफर में है, उस सफर में जहां हम छोटी छोटी जंग को फतेह करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं. वो सफर अक्सर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी बहुत याद आता है. आई एम श्योर आप भी इस सफर को एंजॉय कर रहे होंगे, सफर गीतों और बातों का, आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदातला.

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: बाकी
2: जो मर्जी हुंदा हो जावे वीरे पर गाल नहीं कढ़नी।
3: हम मानते नहीं, ढूंढते नहीं, पर हम में से हर एक में लीड करने की, इंस्पायर करने की क्षमता है। चले जिसे भी आप अपना आइडियल मानते हो, वैसे मैं अपनी बात करूं तो आई विश आई कुड बी मे बी अ बिट लाइक डॉक्टर किरण बेदी, द वर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। मन चाहता है वैसा बनना, पर कहीं ना कहीं डर भी लगता है। फिर सोचती हूँ कि वो किसी और प्लैनेट से थोड़े ना आई है, हम में से ही तो एक है। जब इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी के बारे में स्ट्रांगली सोचती हूँ, तब उठता है मेरी तरफ से एक छोटा सा कदम ह्यूमैनिटी के लिए। अभी बातें और भी होंगी, बट पहले एंजॉय करते हैं ये अगला ट्रैक आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।

0: रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी है
1: क्या। You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: गुस्सा हमेशा से हमारा बहुत बड़ा दुश्मन रहा है और कई बार ये इतना बड़ा नुकसान कर जाता है हमारा कि भरपाई नहीं हो पाती। कहते एक बार एक आदमी ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा किया और उन्हें जोड़ कर अपनी ड्रीम कार खरीदी। उस कार को बाय करना वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। घर लेकर आए, चाय पीकर घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं। वेल अभी बहुत लंबी बात है, पहले एंजॉय करते हैं अगला ट्रैक एंड देन वी विल कंटिन्यू।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चाय पीकर घर से बाहर निकले तो देखते हैं कि उस इंसान के 3 साल के बेटे के हाथ में हथौड़ा आ चुका है और कार के राइट साइड पर बहुत से डेंट थे। He was hitting the car with a hammer. इस सारी सिचुएशन को देखकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया दैट इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। उसी हथौड़े के साथ बच्चे के हाथ पर दे मारा। कुछ देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो झट से हॉस्पिटल भागे। चोट ज्यादा थी इसलिए अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की एक फिंगर एम्प्यूटेट करनी पड़ी।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: जो अभी हमने बात की उस इंसान के बारे में जिसने गुस्से में आकर अपने बच्चे की एक फिंगर गवा दी, टाइम निकाल पाए तो कभी गौर जरूर करें इस बारे में। और अगर इस इंसिडेंट के बारे में दिमाग के साथ साथ आप दिल से भी सोचेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप फिर कभी भी पेशेंस लूज नहीं करेंगे, खासकर अपने अपनों के साथ, क्योंकि टूटी कार ठीक हो सकती है, महंगी चीजें जो डैमेज हो गई है दोबारा खरीदी जा सकती है, बट ब्रोकन बोन्स एंड हर्ट फीलिंग्स ऑफन कांट। Well, the moral being that think before you act, be very patient, be very understanding and very, very loving.

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मैंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नल पढ़ा जिसमें राइटर ने लिखा था कि मैं ऑफिशियली बड़ा होने से रिजाइन करता हूँ और वापस एक 8 साल के बच्चे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो जिंदगी जब लाइफ बेहद सिंपल थी, फुल ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन। व्हेन लाइफ टर्न्ड इट लुक्ड लाइक अ फेयर और हर इंसान अच्छा और ऑनेस्ट लगता था। कोई डिप्रेसिंग न्यूज, बीमारी, गॉसिप नहीं थी, तो बस प्योरिटी, स्माइल्स एंड ड्रीम्स। याद आ गए ना वो सारे पुराने दिन, क्योंकि आज भी उम्र चाहे हमारी बढ़ गई है लेकिन दिल में एक बच्चा तो अभी भी कहीं छिपकर रहता है।

0: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
4: किसी ने राइटर एर्मा से पूछा कि अगर उन्हें लाइफ फिर से मिली तो वो कैसे जीना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो बात कम करेंगी, सुनेंगी ज्यादा, किसी भी चीज के टूटने पर चिल्लाएंगी नहीं सब पर, और अपनी जिंदगी में सॉरी, थैंक यू एंड लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट, हर एक लम्हे को फील करके जीना चाहेंगी। वेल, आई एम श्योर कि अगर आप भी अर्मा की बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस आज से ही लानी शुरू कर देंगे बिफोर इट गेट्स टू लेट।

0: ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अक्सर हम लोग एक भ्रम, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो सच्चाई और रियलिटी से बहुत अलग है। माई वर्ल्ड, माई हैप्पीनेस, माई लाइफ, इनफैक्ट माई, मैं, मेरा, यहीं तक सीमित है हमारी दुनिया। पर जरा सोचें कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती हुई कश्ती को पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: जब हम लोग अपने पर टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं जो हम अपनी हॉबीज पर स्पेंड करते हैं। साथ ही साथ कुछ वक्त बिताएं सच में अपने सेल्फ एनालिसिस पर भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता, और अगर ऐसा है तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि जिंदगी भर बस यूं ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।

0: culture of Punjab. Aapka daily entertainment dose.
1: स्मार्टली जीना है तो जिंदगी में कोई मकसद या एम जरूर होना चाहिए, और जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक कुआं है जहां आज नहीं तो कल वो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सिर्फ एम नहीं, उस एम को अचीव करने के लिए चाहिए ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सी पॉजिटिव सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात से सहमत होंगे कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ता इरादे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज, मेरे हाथ की लकीरों।